का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

राम जी लला जी की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र जी की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री सीताराम। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधाम।

जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। श्रोताओं, आज 20 अगस्त 2026 है और इस दिन की अहमियत के हवाले से अगर बात करेंगे तो सनातन धर्म की इस दिन के हवाले से एक खास अहमियत है। 20 अगस्त 2026 सनातन धर्म की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण तिथि है, क्योंकि इस दिन श्रावण मास यानी कि सावन के शुक्ल पक्ष की अष्टमी है और मासिक दुर्गा अष्टमी भी पड़ रही है। यह दिन गुरुवार का भी है। पंचम के अनुसार अष्टमी 19 अगस्त की शाम से शुरू होकर 20 अगस्त की रात तक रहेगी। श्रोताओं, आपको बताएंगे कि 20 अगस्त को श्रावण शुक्ल अष्टमी है। सावन को सनातन परंपरा में भगवान शिवा की उपासना, व्रत, जाप और तपस्या के लिए विशेष महत्व दिया गया है। श्रावण के दौरान भक्ति और संयम को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है।

है। मजीद भी आपको इस हवाले से बताएंगे कि आज 20 अगस्त 2026 है और सनातन धर्म की अगर बात करेंगे तो इस दिन की क्या अहमियत है। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहें।

जी श्रोताओं, आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स, OTT

प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। जैसा कि 20 अगस्त 2024 के हवाले से मैं आपको जानकारी दे रही हूं कि सनातन धर्म की इस दिन के हवाले से क्या अहमियत है। इस दिन मासिक दुर्गा अष्टमी है। यह हर मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को आने वाली देवी उपासना की तिथि है। श्रोताओं, 2024 में अगस्त वाली दुर्गाष्टमी 20 अगस्त को है। अष्टमी तिथि लगभग 19 अगस्त शाम 7:19 से लेकर 20 अगस्त रात 9:18 तक है। इसलिए इस दिन मां दुर्गा आदि शक्ति की उपासना करना विशेष रूप से उचित माना जाता है। और इस दिन की क्या आध्यात्मिक संदेश है वो मैं आपको बताऊंगी। दुर्गाष्टमी का मूल भाव केवल किसी एक इच्छा की पूर्ति नहीं, बल्कि आंतरिक शक्ति, साहस, विवेक और अधर्म पर धर्म की विजय के लिए देवी का सम्मान करना है। आप मां दुर्गा के सामने दीपक जलाकर प्रार्थना कर सकते हैं। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए और मैं आज उनके हवाले से सनातन धर्म की क्या अहमियत है वो मैं आप तक जानकारी पहुंचाती रहूंगी। मेरे संग बने रहें।

श्रोताओं, 8 बज रहे हैं, सुबह के 8 बज रहे हैं और अब आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: का एक जिद्दी पड़ोसी है। पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा। तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4th दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। ईरान की मदद करने वाले देशों को दी बुरे आर्थिक नतीजे भुगतने की धमकी। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एक्सल्टफेन में इंग्लैंड से खेलेगी। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे भारतीय रेल के वर्तमान नेटवर्क में लगभग 410 किलोमीटर की वृद्धि होगी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन परियोजनाओं की लागत 9,450 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है और इन्हें 2030-31 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2: 5 बहुत बड़े फैसले लिए हैं। पहले 4 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेलवे के हैं और 5वां प्रोजेक्ट हाईवे का है। पहले 4 प्रोजेक्ट में जो हावड़ा से चेन्नई की रूट है, मेन लाइन है, इस मेन लाइन के क्वाड्रुपलिंग के डिसीजंस हैं। और एक है कटक से पैरादीप रेलवे लाइन का क्वाड्रुपलिंग का 3rd and 4th लाइन। और 5वां प्रोजेक्ट है मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक ये 4 लेन हाईवे बनाने का। टोटल 13,041 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट्स कैबिनेट ने अप्रूव किए।
1: श्री वैष्णव ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन वाले मानक राजमार्ग में अपग्रेड करने को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित परियोजना बिहार के बढ़ते राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क से जुड़ने के कारण रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: ये प्रोजेक्ट नेपाल के बॉर्डर से लेके स्टार्ट होता है। 83 किलोमीटर का ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट है। एग्जिस्टिंग लाइन को अपग्रेड किया जाएगा 4 लेन हाईवे में और 3,591 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट इसमें हो। कई मेजर टूरिज्म के स्पॉट्स हैं, प्लस एक तरीके से ये सारा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस परिषद में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप शामिल हैं। बैठक में दक्षिणी क्षेत्र के सदस्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासक तथा प्रत्येक राज्य से 2 वरिष्ठ मंत्री उपस्थित रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस बैठक से द्विपक्षीय रक्षा संबंध और मजबूत होंगे, रणनीतिक भरोसा और सहयोग बढ़ेगा तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश समुद्री सुरक्षा में गहरे सहयोग और मेक इन इंडिया फ्रेमवर्क के तहत रक्षा उपकरणों और तकनीक के क्षेत्र में करीबी सहयोग पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आर्मेनिया की अपनी 2 दिन की यात्रा पूरी कर ली है। यात्रा के दौरान उन्होंने आर्मेनिया के उप रक्षा मंत्री करेन ब्रुटियान और जनरल स्टाफ प्रमुख एडवर्ड अस्रियान के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बातचीत में रक्षा और सैन्य तकनीक सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ये सम्मेलन नए और उभरते क्षेत्रों सहित सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। एक रिपोर्ट।
1: सम्मेलन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य उद्योग इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भाग ले रहे हैं। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी। इसके बाद दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई। इन बैठकों में उन्नत विनिर्माण, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य सेवा और चिकित्सा, कौशल विकास तथा स्थिरता पर हुई चर्चाओं से भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी की रूपरेखा तैयार हुई। इसे पिछले वर्ष सितंबर में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग की भारत यात्रा के दौरान लागू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये सम्मेलन दोनों पक्षों के बीच जारी पहलुओं की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी सहयोग को और मजबूत करने के अवसर प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत सिंगापुर व्यापारिक गोलमेज सम्मेलन का चौथा संस्करण भी आयोजित किया जाएगा। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया है। भारत ने कहा है कि परिषद की संरचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों के अनुरूप होनी चाहिए और इसमें विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। परिषद में कार्यप्रणाली पर चर्चा में संयुक्त राष्ट्र में भारत की प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि सुधारों की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक आवश्यक है। उन्होंने स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की सदस्यता में विस्तार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व की भारत की मांग दोहराई।
2: सुरक्षा परिषद में सुधारों पर भारत का रुख स्पष्ट रूप से ज्ञात है। हम ग्लोबल साउथ के लिए अधिक प्रतिनिधित्व के साथ दोनों श्रेणियों में विस्तार चाहते हैं। इसे केवल स्पष्ट रूप से परिभाषित बिंदुओं और वार्ताओं के माध्यम से ही हासिल किया जा सकता है।
0: उन्होंने कहा कि वर्ष 1945 के बाद से संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इंडिया डे फेस्टिवल आज मॉस्को में शुरू हो रहा है। चार दिवसीय इस फेस्टिवल में भारतीय और रूसी समुदायों को संस्कृति, परंपराओं और लोगों के बीच आपसी संबंधों का जश्न देखने को मिलेगा। एक रिपोर्ट।
3: यह फेस्टिवल मॉस्को के गोस्टिनी द्वोर में आयोजित किया जाएगा। संस्कृतियों की एकता, लोगों की दोस्ती थीम पर आयोजित इस फेस्टिवल में कई जगह पर अलग अलग तरह के कार्यक्रम होंगे। यहाँ बने लगभग 20 खास जोन में आने वाले लोगों को भारतीय संस्कृति के अलग अलग पहलुओं जैसे योग, शतरंज, भारतीय शादियाँ, नृत्य, भारतीय व्यंजन और आयुर्वेद को जानने समझने का मौका मिलेगा। इस फेस्टिवल में पूरे रूस से लगभग 75 योग स्कूल और दूसरे देशों के इंस्ट्रक्टर भी शामिल होंगे। भारतीय नृत्य की विविधता और कलात्मक परंपराओं को दिखाने वाले कार्यक्रमों में 200 से ज्यादा भारतीय और रूसी डांसर भी हिस्सा लेंगे। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक संसद में मतदान होगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद के बीच होगा। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति कल शाम बंग भवन के दरबार हॉल में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ नए आर्थिक युद्ध की घोषणा की है। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को अमेरिका के साथ समझौता करने के कई अवसर दिए गए लेकिन वो विफल रहा। एक रिपोर्ट।
4: ट्रंप ने ईरान की मदद करने वाले किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंध लगाने की धमकी भी दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि कोई भी देश जो अपने वित्तीय संस्थानों, व्यवसायों, हवाई अड्डों या सरकारी एजेंसियों को ईरान को समर्थन देने की अनुमति देता है उसे भी भारी आर्थिक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही अपनी चेतावनी को दोहराया कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रंप ने कहा कि बातचीत भविष्य में फिर से शुरू हो सकती है लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि तेहरान को पहले समझौता करने के लिए तैयार होना होगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगीर गालिबफ ने कहा कि ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को तब तक नहीं खोलेगा जब तक अमेरिका 14 सूत्री ज्ञापन के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं कर लेता। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी विशाल, खेल खबर।

0: में शुरुआत करते हैं हॉकी से। FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम का सामना आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलवीन के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। दूसरी ओर भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कल अपने अंतिम ग्रुप मैच में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 5-3 से हराकर अगले दौर के लिए क्वालिफाई कर लिया है। हरमनप्रीत सिंह और हार्दिक सिंह ने 2-2 गोल किए, जबकि अभिषेक ने 1 गोल दागा। और विशाल, अगर बात करें बैडमिंटन की, तो BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में महिला सिंगल्स में PV सिंधु का मुकाबला चीन की खिलाड़ी से होगा। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी और इंडोनेशिया के अलवी फरहान आमने सामने होंगे। वहीं पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी चुनौती पेश करेंगे। महिला डबल्स में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद का मुकाबला जापान की जोड़ी से होगा। अगर बात की जाए मिक्स्ड डबल्स में, तो ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो चीन की जोड़ी से खेलेंगे। और अब ले चलते हैं अपने श्रोताओं को क्रिकेट के मैदान की तरफ। तो श्रीलंका के गोल में भारत ने 2 मैचों की टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका को 165 रन से हराया है। भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो विशाल, ये थी अब तक की कुछ महत्वपूर्ण खेल खबरें।
1: और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में कल तक तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तरी ओडिशा के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।
2: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ का पानी गंभीर समस्या बना हुआ है। पानी का स्तर अभी भी ऊंचा है और धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे कई लोग फंसे हुए हैं। बालेश्वर जिले में बालियापाल सबसे बुरी तरह प्रभावित इलाकों में से एक है, जहां खबर है कि 45,000 से ज्यादा लोग अभी भी फंसे हुए हैं। भद्रक जिले में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद है। सुवर्णरेखा नदी का जलस्तर भी बढ़ रहा है। राजघाट पर आज सुबह 6 बजे नदी 11.80 मीटर के स्तर पर बह रही थी, जबकि खतरे का निशान 10.36 मीटर है। सुवर्ण रेखा की बाढ़ से लगभग 2,80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। IMD ने इस शनिवार से फिर बारिश का अनुमान जताया है और मयूरभंज, केंद्र और सुंदरगढ़ जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की है, जिससे और ज्यादा बाढ़ आने की चिंता बढ़ गई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में बारिश से गर्मी से राहत मिली है। मौसम सुहावना हो गया है। कई इलाकों में कल रात से बारिश हो रही है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
3: धन्यवाद विशाल। जम्मू कश्मीर भारत का महत्वपूर्ण अंग। भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो कोर का ये बयान आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण के अनुसार जम्मू कश्मीर के अपने पहले दौरे में सर्जियो कोर ने कश्मीर को लेकर अमेरिकी रुख में बड़े बदलाव का दिया संकेत। कहा, जम्मू कश्मीर के लिए यात्रा परामर्श की करेंगे समीक्षा। भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्र आंदोलन के बीच झारखंड सरकार की बड़ी कार्रवाई दैनिक भास्कर में है। 22 भर्ती परीक्षा रद्द, CID को सौंपी गई जांच। UPSC जैसा सिस्टम क्यों नहीं बनाते, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA से सुप्रीम कोर्ट का ये सवाल नव भारत टाइम्स में है। जेंजी को साधने की मोर्चाबंदी तेज, अमर उजाला लिखता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्वविद्यालयों में युवाओं से संवाद का जिम्मा केंद्रीय मंत्रियों को सौंपा। नए सिम कार्ड के लिए नए नियम सख्त, हिंदुस्तान लिखता है, साइबर धोखाधड़ी और डिजिटल अरेस्ट रोकने के लिए सरकार ने नए CM जारी करने की प्रक्रिया और कठोर की। और डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म के जरिए तय समय सीमा से अधिक मोबाइल कनेक्शन रखने वाले ग्राहकों की जाएगी पहचान।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों को कवर करने वाली रेलवे की 4 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा खंड को 4 लेन बनाने को भी स्वीकृति दी। गृह मंत्री अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवलम में दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन का 4था दौर आज सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। बांग्लादेश में आज नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के खिलाफ आर्थिक युद्ध की घोषणा। और FIH हॉकी विश्व कप में पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज शाम एम्स्टलवेन में इंग्लैंड से खेलेगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स

0: नए हुर्मुज की अमरीकी बहरी नाकाबंदी बेहद मुअसर रही। भारत ने अक्वामे मुत्तहिदा सलामती काउंसिल UNSC में फौरी इस्लाहात का मुतालबा किया है और कहा है कि सलामती काउंसिल के ढांचे और फैसला साजी के अमल में मौजूदा दौर की आलमी हकीकतों की अक्कासी होनी चाहिए और तरक्की पजीर मुल्कों को ज़्यादा नुमाइंदगी दी जानी चाहिए। कामकाज के तरीक़ाकार से मुतालिक UNSC के खुले मुबाहिसे के दौरान इजहार ख्याल करते हुए अक्वामे मुत्तहिदा में भारत की शाज़े दाफ़े योजना पटेल ने जोर देते हुए कहा कि इस्लाहात की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा वाज़े तौर पर महसूस की जा रही है। उन्होंने कहा कि साल 1945 से अक्वामे मुत्तहिदा के अराकीन की तादाद में नुमाया इजाफा हुआ है। मोहतरमा पटेल ने दलील दी कि सलामती काउंसिल को उस दौरे के हालात के मुताबिक तरतीब देनी नहीं दी जा सकता। दिल्ली में जारी वोटर फहरिस्तों की खसूसी तफसीली नज़रसानी SIR में दरख्वास्तें जमा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 24 अगस्त कर दी गई है। दिल्ली के चीफ इलेक्टोरल अफसर के मुताबिक नज़रसानी शुदा शेड्यूल के तहत 31 अगस्त को इंतखाबी फहरिस्तों का मुसविदा शाई किया जाएगा। दावे और एतराज़ात दाखिल करने की आखिरी तारीख 30 सितंबर होगी। इन एतराज़ात से निमटने का अमल 31 अक्टूबर तक पूरा किया जाएगा, जिसके बाद 4 नवंबर को हतमी वोटर फहरिस्त शाई की जाएगी। भारत के महकमाए मौसमियात ने आज छत्तीसगढ़, मशरक़ी मध्य प्रदेश और मग़रबी उत्तर प्रदेश में बहुत तेज़ बारिश से मुतालिक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, ओडिशा, ज़ैली हिमालयाई मग़रबी बंगाल और शिमाल मशरक़ी भारत के हिस्सों में कल तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। महकमाए मौसमियात ने कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड, केरलम, माहे और तमिलनाडु में दिन के दौरान गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की है। शिमाली ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल लगातार संगीन बनी हुई है, जहां बारिश में कमी के बावजूद भद्रक, केंद्रपाड़ा, बालासोर, मयूरभंज और क्योंझर जिले पानी में डूबे हुए हैं। सुबर्णरेखा नदी से मुतालिक तशवीश जारी है, जो आज सुबह राजघाट पर 10.36 मीटर के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। FIH हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में ख्वातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। बैडमिंटन में नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में जारी BWF आलमी चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ी आज प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में हिस्सा लेंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया नीतिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात की शह सुर्खियाँ एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा इनकलाब ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में इदारा जाती असलाहत पर जोर देने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को अपनी शह सुर्खी बनाया है कि हमारा फ़र्ज़ है कि एक ऐसा मुतहरिक इदारा बने जिस पर मुल्क को फ़ख्र हो। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी है कि झारखंड में 26 दिनों से जारी तलबा का एहतजाज ख़त्म। वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन वुजरा के एक वफ्द के हमराह सिंगापुर रवाना। इस खबर को रोजनामा प्रताप ने अपनी शह सुर्खी बनाया है। मोहतरमा सीतारमन चौथे भारत सिंगापुर मिनिस्ट्रियल राउंड टेबल में शिरकत करने वहां पहुंची हैं। रोजनामा प्रताप की ही एक और अहम सुर्खी है कि दिल्ली में SIR की तारीख फिर बढ़ी।
0: और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने मगरबी बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के 8 जिलों का इहाता करने वाले 4 मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। मरकजी काबीना ने बिहार में कौमी शाहराह नंबर 22 के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा सेक्शन को 4 लेन करने को भी मंजूरी दी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज तमिलनाडु के कोवालम में जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत करेंगे। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का चौथा दौर आज सिंगापुर में मुनक्किद होगा। बांग्लादेश में नए सदर के इंतखाब के लिए आज वोट डाले जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ मुआशी जंग का ऐलान किया है। ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले किसी भी मुल्क को मुआशी तौर पर सजा देने की भी धमकी दी है। और FIH हॉकी आलमी कप में पूल डी के आखिरी मैच में आज खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: जी श्रोताओं।

आप दिल्ली से समाचार सुन रहे थे। आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 MHz और एफएम पहलगाम 100.1 MHz। डीटीएच की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। जैसा कि 20 अगस्त 2024 के हवाले से सनातन धर्म की क्या अहमियत है वो मैं आपको बता रही हूँ सुबह से ही, क्योंकि आज भी 20 अगस्त 2024 से आज गुरुवार भी है। पंचम में इस दिन शुक्लाष्टमी के साथ गुरुवार का संयोग है, इसलिए इस दिन गुरु और माता पिता का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। भगवान विष्णु के स्मरण करना, उनका स्मरण करना और धार्मिक ग्रंथ का पाठ करना या जरूरतमंद व्यक्ति को दान देना अपने ज्ञान और अच्छे कर्मों को बढ़ाना है। अब इतने में आज दिन के हवाले से 20 अगस्त को क्या ऐसा करना चाहिए जो शुभ माना जा सकता है। देखिए, सुबह के वक्त आपको स्नान करके स्वच्छ वस्त्रण या स्वच्छ वस्त्र जो है वो धारण करना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय और ओम नम दुर्गाय नमः का जाप करें और दुर्गा चालीसा या देवी सतुत्र का पाठ करें। और इतने में अब शाम के वक्त क्या करना है, माँ दुर्गा के सामने दीपक जलाकर परिवार का या परिवार के कल्याण और समाज की शांति के लिए प्रार्थना करना अच्छा रहेगा। अब इतने में एक जरूरी बात मैं आपसे कहती हूं कि 20 अगस्त को जो कि आज है नवरात्रि या महा दुर्गा अष्टमी कहना सही नहीं होगा, यह मासिक दुर्गा अष्टमी है। महा अष्टमी नवरात्रि के संदर्भ में अलग तिथि होती हैं। 2024 के सावन कैलेंडर सावन मौजूद चाहते हैं, सावन कैलेंडर में 20 अगस्त को मासिक दुर्गाष्टमी के रूप में ही दर्ज किया गया है। और आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए। आज जिनके हवाले से हिंदुइज्म या सनातन धर्म में क्या अहमियत है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहें।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहें।

श्रोताओं, श्रद्धा, आस्था और अध्यात्म से भरी श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा 2024 अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छड़ी मुबारक यानी भगवान शिवा की पवित्र छड़ी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचकर यात्रा का समापन को दिव्य रूप जो है वो प्रदान करेगी। आपकी जानकारी के लिए बताएंगे कि श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा 2024 में 3 जुलाई से 28 अगस्त तक चल रही है। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर यात्रा का समापन होगा। छड़ी मुबारक का

धार्मिक महत्व क्या है। छड़ी मुबारक केवल एक पवित्र छड़ी नहीं बल्कि बाबा अमरनाथ जी की पारंपरिक पूजा और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में पवित्र छड़ी को भगवान शिवा का स्वरूप मानकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ अमरनाथ गुफा तक जो है वो ले जाया जाता है। इस पवित्र यात्रा में साधु संत महंत और शिव भक्त बड़े उत्साह के साथ शामिल होते हैं। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहें।

0: मिलाने में मजमू तालीमी मंजरनामे की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि साइंस और टेक्नोलॉजी को फरोग देने के साथ साथ तालीमी इदारों में स्पोर्ट्स, आर्ट्स, लिटरेचर, डिबेट्स और सकाफती सरगर्मियों को दुआ बख्शने की तरफ भी तवज्जो दी जानी चाहिए। जम्मू में कल श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के 23वें योम तासीर तकरीबात से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह यूनिवर्सिटी इल्म, इख्तिरायत और समाजी जिम्मेदारी के एक अहम मरकज के तौर पर उभर कर सामने आ रही है। उन्होंने तदरीस और तहकीक के शोबों में यूनिवर्सिटी की हौसल याबियों की सताइश की। जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश रॉय की क़यादत में यूनिवर्सिटी के शोबजात के सरबराहान असातिज़ा और अहदेदारान के एक वफद ने जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने इदारे की तरक्की, तामीर और मुस्तकबिल में तालीमी तौसी से मुतालिक अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर एलजी ने यूनिवर्सिटी की अहमियत को उजागर करते हुए यूनिवर्सिटी को मुआशरे और कौम के लिए बामकसद खिदमात की फराहमी का सिलसिला जारी रखने पर जोर दिया। दरियासना बीजेपी के तर्जमान एडवोकेट अंकुर शर्मा भी एलजी से मुलाकात हुए। भारत में अमेरिका के सफीर सर्जियो गोयर ने कल श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मुतअद्दिद उमूर पर सैर हासिल तबादला ख्याल किया। वजीर आला ने उम्मीद जाहिर की कि भारत और अमरीका के दौरान दरमियान दो तरफा रिश्ते मजीद मजबूत होंगे और इसके मुस्बत असरात जम्मू कश्मीर पर भी पड़ेंगे। उन्होंने सियाहत, हॉर्टिकल्चर और दीगर शोबों में शराकत दारी को मजीद मुस्तकम करने पर जोर दिया। अमरीकी सफीर ने वजीर आला के साथ हुई बातचीत को फायदा बख्श करार देते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर कुदरती खूबसूरती के तमाम वसाइल से माल है। उन्होंने कहा कि सियाहत के शोबे में वसाइल को बरोए कार लाने में अमरीका तमाम इम्कानात तलाश करेगा। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने कल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान हुक्मरानी के अमल को बेहतर बनाने के लिए सेंटर फॉर इनोवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन के मुस्तकबिल के नक्शरा और इससे जुड़े दीगर उमूर का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी ने यूटी में एक स्पेशल पर्पस व्हीकल कायम करने की जरूरत पर जोर दिया ताकि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्टों की निगरानी नीज तरक्याती अमल को तकवीत बख्शी जाए। इस मौके पर CITAG के CEO और डॉक्टर संदीप ने जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के साथ इदारा जाती शराकत दारी के तहत पेश का खाका पेश किया। आज सद्भावना दिवस है। ये दिन मुल्क के साबिक वजीर आजम राजीव गांधी के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। आज मुल्क भर में राजीव गांधी को खराज अकीदत पेश करने के लिए कई तकरीबात का अहतमाम हो रहा है जिसमें मुल्क के तई इनके खिदमात और अजीम कुर्बानी को उजागर किया जा रहा है। सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने कल श्रीनगर में एक मीटिंग के दौरान ईद मिलादुलनबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आसार शरीफ दरगाह हजरत बल जनाब साहब सोहरा, आसार शरीफ कलाशपुरा, अहम शरीफ बांडीपुरा और वादी की दीगर मसाजिद, जियारतगाहों और मुकाजात में जायरीन के लिए किए जा रहे इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत दी कि वो जायरीन के लिए बिजली, पानी, सफाई सुथराई, तिबी निगहदाश्त और ट्रांसपोर्ट के माकूल इंतजाम मुकम्मल करें। और अब दर्जे हरारत, श्रीनगर में रात कम से कम दर्जे हरारत 21 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जे हरारत 23.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
1: श्रोतो, आप न्यूज़ समाप्त कर रहे थे। 9:30 हो रहे हैं। आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, डीटीएच और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आपको बताएंगे कि 22 अगस्त 2026 मुख्य छड़ी यात्रा का प्रारंभ। 22 अगस्त 2026 से छड़ी मुबारक की मुख्य पवित्र यात्रा शुरू होगी। महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में पवित्र छड़ी को अमरनाथ जी की गुफा की ओर ले जाया जाएगा। उसके बाद छड़ी मुबारक की यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग से आगे बढ़ेगी। फिर छड़ी मुबारक 22

29 अगस्त को पहलगाम में विश्राम करेगी। पहलगाम पहुंचने पर भक्तों के बीच भक्ति और शिव नाम का माहौल देखने को मिलेगा और उसके बाद 24 अगस्त को पवित्र छड़ी चंदनवारी पहुंचेगी। यहां से यात्रा और भी कठिन पहाड़ी क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ेगी और 25 अगस्त को छड़ी मुबारक शेषनाग पहुंचेगी। शेषनाग का आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण में भक्तों के लिए ये पड़ाव विशेष महत्व रखता है। उसके बाद 26 और 27 अगस्त को छड़ी मुबारक पंचतरणी में दो रात विश्राम करेगी। पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा का अंतिम चरण शुरू होता है और यहां से हर भक्त के मन में एक ही आस होती है, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। और 28 अगस्त 2024 के हवाले से भी आपको जानकारी देंगे और फिलहाल हमारे इस विशेष प्रसारण में बने रहें।

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहें।

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए हम आपको जानकारी दे रहे हैं 28 अगस्त 2026 के हवाले से। और फिर आता है वो पवित्र दिन जिसका हर शिव भक्त भी सबरी से इंतजार करता है। 28 अगस्त 2026 रक्षा बंधन के पवित्र अवसर पर छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचेगी। गुफा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और बाबा बर्फानी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की जाएगी। इसी के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का पवित्र समापन होगा। छड़ी मुबारक की ये पवित्र यात्रा हमें केवल भगवान शिवा के दर्शन का अवसर नहीं देती बल्कि हमें श्रद्धा, संयम, सेवा और एकता का संदेश भी देती है। 28 अगस्त 2026 को छड़ी मुबारक के हवाले से खास अहमियत ये है क्योंकि इसी दिन श्रावण पूर्णिमा के मौके पर छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचकर अंतिम पारंपरिक पूजन और दर्शन की रस्म अदा करेगी। 2026 की अमरनाथ यात्रा भी 3 जुलाई से 28 अगस्त तक जो है वो रखी गई है। आप हमारे साथ इस विशेष प्रसारण में बने रहे और सुनते रहिए भजन।

जी श्रोताओं, विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 आप समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। अब ये अहम सवाल उठता है कि क्या आम यात्री छड़ी मुबारक के साथ जा सकते

सकते हैं या नहीं? और इसका जवाब है बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन वैलिड रजिस्ट्रेशन और यात्रा परमिट जरूरी है। और इसी हवाले से महंत दीपेंद्र गिरी जी की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो भी साधु या श्रद्धालु छड़ी मुबारक के साथ चलना चाहते हैं उनके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन परमिट होना चाहिए। इसीलिए अगर आपका मकसद 28 अगस्त को छड़ी मुबारक के साथ या उसके करीब अमरनाथ गुफा में दर्शन करना है तो सिर्फ आम यात्रा रजिस्ट्रेशन होना ही काफी समझना ठीक नहीं होगा। ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन, रूट एक्सेस और उस दिन के सिक्योरिटी एक्सेस अरेंजमेंट्स को जरूर फॉलो करना होगा। छड़ी मुबारक का पवित्र गुफा तक पहुंचना सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि अमरनाथ यात्रा की पारंपरिक जो है वो समाप्ति का धार्मिक चरण है। और श्रावण पूर्णिमा के दिन पवित्र गुफा में पूजा, मंत्र उच्चारण और अन्य पारंपरिक रस्में होती हैं। और पिछले साल भी छड़ी मुबारक के गुफा में जो है पहुंचने पर विशेष पूजा और आरती हुई थी। आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए।

जी श्रोताओं, आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 समाप्त कर रहे हैं। एफएम पहलगाम, एफएम मौजर चाहते हैं, एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और डीटीएच की आराधना सर्विस न्यूज़ ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। हम शरी मुबारक के मुख्तलिफ पड़ावों से मुतल्लिक आपको जानकारी दे रहे हैं और चूंकि 22 अगस्त से शरी मुबारक की मुख्य पवित्र यात्रा जो है वो शुरू होगी और इस हवाले से महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में पवित्र छड़ी को अमरनाथ जी की गुफा की ओर ले जाया जाएगा। छड़ी मुबारक की यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग से फिर आगे बढ़ेगी और छड़ी मुबारक 22 और 23 अगस्त को पहलगाम में विश्राम करेगी। उसके बाद पहलगाम पहुंचने पर भक्तों के बीच भक्ति और शिव नाम का माहौल देखने को मिलेगा। फिर अगर 24 अगस्त के हवाले से बात करेंगे श्रोताओं, तो 24 अगस्त को पवित्र छड़ी चंदनवारी पहुंचेगी। यहां से यात्रा और भी कठिन पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी और फिर उसके बाद 25 अगस्त को छड़ी मुबारक शेषनाग पहुंचेगी। शेषनाग के आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण में भक्तों के लिए ये पड़ाव विशेष महत्व रखता है। उसके बाद 24 और 27 अगस्त को छड़ी मुबारक पंचतरणी में 2 रात विश्राम करेगी। पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा का अंतिम चरण शुरू होता है। यहां से हर भक्त के मन में एक ही आस होती है, बाबा बर्फानी के दिव्य दर्शन। और 28 अगस्त की अगर बात करेंगे वहां पर जो है, और फिर आता है वो पवित्र दिन जिसका हर शिव भक्त बेसब्री से इंतजार करता है। 28 अगस्त 2024 रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर छड़ी मुबारक श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुंचेगी। आप हमारे साथ बने रहे इस विशेष प्रसारण के साथ और सुनते रहिए शिव।

जी श्रोताओं, आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz पर, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, आप इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ बने रहिए।

श्रोताओं, इस साल एक महत्वपूर्ण परिस्थिति ये भी है कि अमरनाथ यात्रा के दोनों मुख्य रूट्स पर 9 अगस्त से यात्रियों की यात्रा मौसम और ट्रैक रिपेयर के कारण सस्पेंड कर दी गई थी, लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि छड़ी मुबारक अपनी पारंपरिक पहलगाम रूट से आगे बढ़ेगी और 28 अगस्त को यात्रा का पारंपरिक समापन होगा। इसलिए 2024 में छड़ी मुबारक की परंपरा का धार्मिक महत्व और भी खास हो गया है। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि बाबा अमरनाथ जी के प्रति सदियों पुरानी शिव भक्ति, साधु परंपरा और कश्मीर की धार्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। एक और जरूरी बात आपको कहना चाहेंगे, छड़ी मुबारक की पारंपरिक यात्रा और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रबंधित आम यात्री जो है वो यात्रा को एक ही चीज ना समझना चाहिए। छड़ी की धार्मिक परंपरा महंत दीपेंद्र गिरी और साधु परंपरा के नेतृत्व जो है वो उसमें चलती हैं। और 2024 के लिए श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में भी यात्रा संबंधी नोटिस और हेल्पलाइन उपलब्ध हैं, और इस हवाले से आप हमारे साथ विशेष प्रसारण में बने रहें।

जी श्रोताओं, आप विशेष प्रसारण श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 समाप्त कर रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz और FM पहलगाम 100.1 MHz और DTH की आराधना सर्विस न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी हम उपस्थित हैं। आप हमारे साथ बने रहें।

0: जी श्रोताओं, दिन के 12 बज रहे हैं। आइए आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो, जहां से आप समाचार सुनेंगे।
1: अग्रवाल, कुछ ही देर में हम सुनेंगे समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजोरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी विचार करेंगे। दोनों मंत्री समुद्री सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने और मेक इन इंडिया के तहत रक्षा उपकरणों तथा तकनीक के क्षेत्र में साझेदारी मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। जापान के रक्षा मंत्री ने कल मुंबई में पश्चिमी नौसेना कमान का दौरा किया। श्री कोइजुमी ने नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन और पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल संजय वात्स्यायन के साथ बातचीत की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। बैठक में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद भी उपस्थित थे। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। गृहमंत्री अमित शाह चेन्नई के कोवरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में अंतर्राज्यीय सहयोग, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश, साझेदारी को मजबूत करना, अवसंरचना विकास, जल संसाधन बंटवारा, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सूचना प्रौद्योगिकी, आपदा प्रबंधन, अपराध रोकथाम और सीमा विवाद जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। उनके सामान की विस्तृत जांच के दौरान उनसे कुल 68 लाख 53 हजार रुपए बरामद हुए।

0: said the strikes hit 12 locations across three districts, damaging residential buildings, a medical facility, and an educational institution. The attack comes as Russia intensifies ballistic missile strikes on Kiev, putting further pressure on Ukraine's limited air defense capabilities. In hockey, the Indian women's team will face England today in their final Pool D match of the FIH Hockey World Cup at Wagner Stadium in Amstelveen. The match will begin at 6:30 p.m. IST. In the women's singles, former world champion P.V. Sindhu will take on third seed Wang Ziyi of China. In the men's singles, Indian debutant Ayush Shetty will face 11th seed Alvi Farhan of Indonesia. In men's doubles, 5th seed Satvik Sairaj and Ki Reddy and Chirag Shetty will play against Junaidi Arif and Roy King Yap in the round of 16. In women's doubles, the Indian pair of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand will face 7th seeds Rin Iwanaga and Kie Nakanishi of Japan. In mixed doubles, Dhruv Kapila and Tanisha Krasto will take on China's Guo Shenhua and Chen Fanghui. And with that, we end this news bulletin.
1: श्रोताओं, आप दिल्ली स्टूडियो से समाचार सुन रहे थे। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अमरनाथ जी यात्रा 2024 के हवाले से अगर बात करेंगे, इस साल एक महत्वपूर्ण परिस्थिति ये भी बनी है कि अमरनाथ यात्रा के दोनों जो मुख्य रूट्स हैं, मुख्य रूट्स पर 9 अगस्त से यात्रियों की जो यात्रा है, मौसम और ट्रैक रपियर के कारण जो है वो सस्पेंड कर दी गई थी। लेकिन अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि छड़ी मुबारक अपनी पारंपरिक पहलगाम रूट से आगे बढ़ेगी और 28 अगस्त को यात्रा का पारंपरिक समापन होगा। इसलिए 2024 में छड़ी मुबारक की जो ये परंपरा है, इसका धार्मिक महत्व और भी खास हो गया है। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि बाबा अमरनाथ जी के जो उसके प्रति सदियों पुरानी शिव भक्ति, साधु परंपरा और कश्मीर की धार्मिक विरासत का जीवंत प्रतीक है। और एक और जरूरी बात आपसे कहना चाहेंगे, छड़ी मुबारक की पारंपरिक यात्रा और श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा जो है वो प्रबंधित आम यात्री यात्रा को एक ही चीज नहीं समझना चाहिए। छड़ी की धार्मिक परंपरा महंत दीपेंद्र गिरी और साधु परंपरा के जो नेतृत्व है उसमें चलती हैं। और 2024 के लिए श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन में भी यात्रा संबंधी नोटिस और हेल्पलाइन उपलब्ध हैं और इस हवाले से आप हमारे साथ जो हैं इस विशेष प्रसारण में बने रहें।

श्रोताओं, 12:30 हो चुके हैं। अब अगली आवाज़ साइका सलीम की, और अब से लेकर शाम के 6 तक आपकी अपनी रेडियो सखी साइका सलीम आपके साथ रहेगी। और इसी के साथ अपनी रेडियो अघोषिक सबरीना महराज को इजाज़त दीजिए, और हम यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी यात्रा सफल रहे। शुभ यात्रा, जय हिंद।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के साथ और आप सुन पा रहे हैं हमें FM बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म पर भी जो है हम उपलब्ध हैं। और इस विशेष प्रसारण से हम यात्रा के जो है क्षण क्षण की जानकारी यात्रा से जुड़ी आप तक पहुंचाने की पूरी पूरी कोशिश करते रहते हैं। बने रहिए हमारे संग।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक इस समय नई दिल्ली में चल रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमी बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में दोनों देशों के रक्षा संबंधों को और मजबूत करने तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। श्री सिंह ने जापान के कुमामोटो में आए भीषण भूकंप पर संवेदना व्यक्त की और हर जरूरी सहायता देने की भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि भारत जापान संबंध साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आपसी सम्मान और पुराने सभ्यतागत संबंधों पर आधारित है। जापान के रक्षा मंत्री ने भूकंप पर भारत की संवेदना के लिए आभार जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज सिंगापुर में वहां के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रोडमैप के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की और आर्थिक सहयोग, डिजिटलीकरण, संपर्क, कौशल विकास और स्थिरता सहित विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिण क्षेत्रीय परिषद की बैठक चेन्नई के कोवलम में शुरू हुई। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों ने अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास प्राथमिकताओं पर चर्चा की। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि बैठक के दौरान सभी एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय और समय पर तैयारियां पूरी करने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुसार दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जनकल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत के निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 68 लाख रुपए से अधिक की बेहिसाब नकदी बरामद की है। CISF ने बताया कि संदेह होने पर दो यात्रियों की विस्तृत जांच की गई। दोनों यात्री गुवाहाटी और फिर आगे अगरतला जा रहे थे। जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें दो मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और एक सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व और पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत तथा बचाव कार्य जारी है। घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज तेजी दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 557 अंक बढ़कर 77,466 जबकि निफ्टी 141 अंक के वृद्धि के साथ 24,219 पर कारोबार कर रहा था। FIH हॉकी विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड से खेलेगी। ये मैच एम्स्टरडैम के वैगनर स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा। नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाका निशी को हराया। पीवी सिंधु

0: women's doubles duo of Teresa Jolly and Gayatri Gopichand has stormed into the quarterfinals of the BWF World Championships in New Delhi. And with that, we end this news bulletin.
1: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग, और ये विशेष प्रसारण आप तक पहुंच रहा है FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी हम आपके साथ जो है जुड़े हुए हैं।
2: तो 83 में
3: भाई जा कहाँ रहा है?
4: पता नहीं, तू जा।

0: अरे भाई कहाँ जा रहे हो?
1: मंदिर जा रहा हूँ।
0: मंदिर तो बंद है, मंदिर पूरे एक साल बाद खुलेगा।

जी श्रोताओं, अब करते हैं बात श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी। श्रोताओं, तीर्थयात्री बहुत ही आस्था और श्रद्धा के साथ यात्रा करते हैं। उनके लिए ये गुफा जो है, गुफा मंदिर, ये पवित्र मंदिर की ये साधारण सी या यात्रा जो है एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। ये गुफा हिमालय के उस तपस्वी का घर है जो सांहारिक और औपचारिक दोनों है और हिंदू देवताओं में सबसे महान भी। श्रोताओं, अनंतनाग ज़िले में श्री अमरनाथ जी यात्रा जो है होती है और अमरनाथ पर्वत पर स्थित अमरनाथ जी गुफा के लिए मशहूर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 5,486 मीटर है। अमरनाथ जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर पहलगाम से लगभग 48 किलोमीटर दूरी पर है और यहाँ पूरे भारत से बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं और ये पवित्र यात्रा जो है करते हैं। ये अनंतनाग ज़िले के ऊपरी इलाकों में समुद्र तल से लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रोताओं, इतनी ऊंचाई के कारण ये गुफा साल के ज़्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में कुछ समय के लिए इसका प्रवेश द्वार खुला रहता है। ये एक बर्फ़ की गुफा है जिसमें बर्फ से कुछ स्तंभ यानी स्टेलैग्मिट्स होते हैं, बन जाते हैं और बर्फ़ की मौजूदगी के कारण और ये स्तंभ बनने के कारण ये गुफा तीर्थयात्रियों के लिए एक बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। पवित्र गुफा के अंदर मौजूद बर्फ के स्तंभ को बर्फ का लिंगम भी कहा जाता है, जो भगवान शिव जी का प्रतीक है। बर्फ के दो छोटे स्तंभ उनकी पत्नी माता पार्वती जी और उनके पुत्र श्री गणेश जी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का ये भी मानना है कि लिंगम की ऊंचाई चंद्रमा की कलाओं से, हम ये कह सकते हैं कि चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती रहती है। श्रावण महीना चल रहा है और श्रावण महीने में ही यानी कि अगस्त की पूर्णिमा के दिन हजारों श्रद्धालु, हजारों बाबा के भक्त इस गुफा की तीर्थ यात्रा करते हैं। इस समय लिंगम अपने सबसे बड़े आकार में होता है। श्रोताओं, जब तीर्थयात्री पवित्र गुफा की ओर जाते हैं या वापस आते हैं तो ज़िले के ज़्यादातर लोग हमेशा खुले दिल से उनका स्वागत करते हैं। रास्ते में चंदनवाड़ी, शेषनाग और पंचतरणी के सुंदर सुंदर से नज़ारे देखने को मिलते हैं और साथ ही रास्ते में पड़ने वाले हम ये कहेंगे कि मटन, मारतंड, अनंतनाग और बिजबिहाड़ा के मंदिर भी देखने को मिल जाते हैं।

श्रोताओ, श्री अमरनाथ जी यात्रा की कथा एक पौराणिक कथा है, एक आस्था की यात्रा है ये। और आपको बता दें कि हिमालय के तीर्थ यात्राएं सबसे पुरानी व्यवस्थित यात्रा प्रणाली हैं, जिन्हें समय के साथ हिंदू ऋषियों ने विकसित किया और जो घूमने फिरने, रोमांच और आध्यात्मिकता की भावना को दर्शाती हैं। श्रोताओं, हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति में से एक शिवजी, यानी कि शिवजी एक जीवित देवता है। भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र पुस्तक ऋग्वेद अपने भजनों में उनकी उपस्थिति का वर्णन करती है। वैदिक कथाएं, रीति रिवाज और यहाँ तक कि खगोल विज्ञान भी समय की शुरुआत से ही उनके अस्तित्व की गवाही देते हैं। माना जाता है कि शिवजी ने हिमालय को अपना घर बनाया था। उन्होंने न तो अपने लिए और न ही अपनी पत्नी माता पार्वती जी के लिए कोई घर या आश्रय बनाया। वे एक तपस्वी थे, फिर भी विवाहित थे। वे दोनों ही रूपों में रह सकते थे क्योंकि वे जंगल में क्रीड़ा करने वाले या बादलों पर आराम करने वाले जंगली देवता थे। कहा जाता है कि शिवजी ने अमरनाथ जी गुफा में माता पार्वती को सृष्टि का रहस्य बताया था। उन्हें पता नहीं चला, लेकिन कबूतरों के एक जोड़े ने ये बातचीत सुन ली और रहस्य जानकर वे बार बार जन्म लेते रहे और उन्होंने पवित्र गुफा को ही अपना स्थायी निवास बना लिया। कई तीर्थयात्री बर्फ के लिंग यानी शिवजी के प्रतीक के दर्शन के लिए इस कठिन रास्ते पर चलते हुए, यानी तीर्थ यात्रा के इस कठिन रास्ते पर चलते हुए कबूतरों के उस जोड़े को देखने की बात भी बताते हैं। श्रावण यानी जुलाई और अगस्त के महीने में श्री अमरनाथ जी की यात्रा

के दौरान श्रद्धालु इस अद्भुत तीर्थ स्थल पर उमड़ पड़ते हैं, जहां लिंग के रूप में शिव जी की आकृति प्राकृतिक रूप से बर्फ के खंबे जैसे बनती है, यानी खंबे के आकार में बनती है, और जो चंद्रमा के साथ गढ़ती बढ़ती रहती है। और सबसे दिलचस्प बात ये है कि इसके बगल में बर्फ के दो और लिंग भी बन जाते हैं, जो कि माता पार्वती जी और उनके पुत्र श्री गणेश जी के बताए जाते हैं।

श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग FM बालतल, FM पहलगाम, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी हम और आप जुड़े हुए हैं। और अब आपको बता दें श्रोताओं की अब से बस चंद ही क्षणों में आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू, अंग्रेजी और हिंदी में समाचार सुनेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। सब शिंजीरो कोइजोमी के साथ बाहमी मीटिंग की है। वजीर दाखला अमित शाह ने अहम बैन रियासती तनाज़ियात, सिक्योरिटी और तरक्याती मामलात पर तबादले ख्याल के लिए तमिलनाडु में 31वीं जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत की। आज सिंगापुर में भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज के चौथे दौर का आगाज हो रहा है। बांग्लादेश में 35 साल के वक्फे के बाद आज पहली मरतबा सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले जाएंगे। त्रिशा जोली और गायत्री गोपीचंद BWF आलमी चैंपियनशिप में खवातीन के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और आज शाम FIH हॉकी आलमी कप में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और जापान के वज़राए दिफा की मीटिंग आज नई दिल्ली में हुई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और जापान के उनके हम मनसब शिंजीरो कोइजोमी ने मीटिंग की मुश्तरका तौर पर
1: आधारित है। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 इयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: जनाब कोइजोमी ने मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भारतीय बहरिया की जानिब से फराहम की गई इमदाद को सराहा। जनाब कोइजोमी ने कहा कि इससे इश्तराक पर मबनी ताल्लुकात का इजहार होता है जिसमें दोनों ममालिक मुश्किल हालात में एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके दिल में भारत के लिए एक खास मकाम है। मलापुरम के नज़दीक कोवालम में मरकजी वजीर दाखला अमित शाह की ज़ेर सदारत 31वीं जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग का आगाज़ हुआ जिसमें जनूबी रियासतों के रहनुमा और सीनियर अहदेदारान बैन रियासती तनाज़ियात, सिक्योरिटी और तरक्याती तरजीहात पर तबादला ख्याल कर रहे हैं। कौमी अहमियत के हामिल वसी तर मामलात पर तबादला ख्याल जारी है जिसमें तेज तर तहकीक़ात के लिए फास्ट ट्रैक खसूसी अदालतों के क़याम और ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ इस्मत दरी के मामलात के जल्द निपटारे समेत तालीम से मुतालिक मामलात भी शामिल हैं। भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज ISMR का चौथा दौर आज सिंगापुर में हुआ। भारत की जानिब से इस गोलमेज में वजीर खजाना निर्मला सीतारमन, वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, कॉमर्स और सनतों के वजीर पीयूष गोयल और सनतों, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कॉमर्स के वजीर मामलिकत जितिन प्रसाद ने शिरकत की। ISMR का मैकेनिज्म नए और उभरते हुए शोबों में इश्तराक को फरोग देने का अहम प्लेटफॉर्म है। ISMR की इफ्तिताही मीटिंग सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी जिसके बाद दूसरी मीटिंग अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी मीटिंग अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। इन मीटिंगों के दौरान एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, कनेक्टिविटी, डिजिटाइजेशन, सेहत देखभाल और अद्वियात, हुनरमंदी के फरोग और पायदारी में भारत सिंगापुर जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी CSP रोड मैप वज़ा किया गया जिसकी नकाब कुशाई गुज़श्ता साल सितंबर में सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वॉन्ग के भारत दौरे के दौरान की गई। इस दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कल सिंगापुर पहुँचने के बाद अपने हम मनसब विवियन बालकृष्णन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं ने दोनों मुल्कों के दरमियान जामे स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद वसअत देने पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसके बाद डॉक्टर जयशंकर सिंगापुर में भारतीय हाई कमीशन के नए चांसरी कॉम्प्लेक्स का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में जनाब बालकृष्णन के साथ शामिल हुए। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तामीर करदा 2,35,000 मकानात की चाबियां मुस्तफिदीन के सुपुर्द कीं। बापू सभानगर में मुनक्किदा एक प्रोग्राम में जनाब चौहान ने नौ मुंतखब मुस्तफिदीन को इजाजतनामे भी तकसीम किए।
2: बिहार के हमारे कच्चे मकान में रहने वाले भाई और बहनों को आज 11 लाख से ज्यादा मकानों की स्वीकृति की सौगात मिल रही है। उनके पास पक्की छत होगी, अपना घर होगा, उनके सपने पूरे होंगे। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बिहार ने सम्मिलित होने का फैसला लिया है। फसलों को अगर नुकसान होगा तो फसल बीमा योजना के अंतर्गत उसकी भरपाई किसान को हो पाएगी।
0: जनाब चौहान पटना के BAMETI में कृषि जन कल्याण संवाद में भी शिरकत करेंगे। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के वजीर ममलिकत हर्ष मल्होत्रा ने आज दिल्ली के

0: काबीना वजीर मनजिंदर सिंह सिरसा के हमराह नई दिल्ली में एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधे लगाने के एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जनाब मल्होत्रा ने कहा कि जब से दिल्ली में बीजेपी हुकूमत इख्तदार में आई है तब से सभी शोबों में मुसलसल तरक्याती काम हो रहे हैं जिसमें माहौलियात का तहफ्फुज भी शामिल है।
1: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। बांग्लादेश में आज सदारती इंतखाब होगा जिसमें अरकान पार्लियामेंट हुक्मरान बीएनपी के मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर और 11 पार्टियों के अपोजिशन इतिहाद के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद में से किसी एक को मुल्क के सदर के ओहदे के लिए मुंतखब करेंगे। बांग्लादेश में 35 साल बाद सदारती ओहदे के लिए पहली बार वोट डाले जाएंगे। वोटिंग मुल्क की पार्लियामेंट यानी जातीय संसद में आज दिन में 2 बजे से 5 बजे तक होगी। बांग्लादेश की माजूल वजीर आजम शेख हसीना के करीबी साथी मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी 5 साल मुद्दत कार मुकम्मल करने से पहले ही सेहत से मुतालिक वजूहात की बिना पर गुज़श्ता माह अपने हुदे से इस्तीफा दे दिया था जिसके सबब सदारती इंतखाबात कराना जरूरी हो गया था। माहौलियात जंगलात और आबोहवा की तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने आज कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जेर क्यादत भारत ब्रिक्स की अपनी सदारत को लोगों पर मरकूज और इंसानियत पहले के जज्बे से तहरीक याफ्ता बनाने की खातिर पुरअज़्म है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर अंग्रेजी के एक रोजनामे में अपना मजमून शेयर करते हुए जनाब यादव ने कहा कि ब्रिक्स की भारत की सदारत एक ऐसे मुस्तकबिल की तश्कील के लिए काम कर रही है जहां कुरे अर्ज को जामे और पायदार तरक्की में मरकजी हैसियत हासिल है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम राजीव गांधी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। राजीव गांधी अक्टूबर 1984 से दिसंबर 1989 तक मुल्क के वजीर आजम थे। केरलम के सभी साहिली जिलों में आज शाम तक के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने की वार्निंग जारी की गई है। साहिली इलाकों में पानी इकट्ठा होने से मुतालिक भी अलर्ट जारी किया गया है। बैडमिंटन में नई दिल्ली में त्रिशा जौली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय खवातीन की जोड़ी BWF आलमी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वें दर्जे की जोड़ी को शिकस्त दी। मर्दों के सिंगल्स में आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अल्वी फरहान से होगा। मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जुनेद आरिफ और रॉय किंग का प्री क्वार्टर में सामना करेंगे। FIH हॉकी आलमी कप के पूल डी के आखिरी मैच में खवातीन की भारतीय टीम का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच एम्स्टलफिन के विगनियर स्टेडियम में भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। मंगल के रोज जनूबी अफ्रीका को 6-1 से हराने के बाद भारतीय खवातीन टीम के हौसले बेहद बुलंद हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भारत बहरुल काहिल खत्ते में 2 तरफा दिफाई ताल्लुकात और सिक्योरिटी को मुस्तहकम करने के खातिर जापान के अपने हम मनसब शिंजीरू कोइजोमी के साथ बाहमी मीटिंग की है। वजीर दाखिला अमित शाह ने अहम बैन रियासती तनाज़ियात सिक्योरिटी और तरक्याती मामलों पर तबादला ख्याल के लिए तमिलनाडु में 31वीं जनूबी जोनल काउंसिल मीटिंग की सदारत की। आज सिंगापुर में भारत सिंगापुर वजारती गोलमेज का 4था दौर हुआ। बांग्लादेश में 35 साल के वक्फे के बाद आज पहली मर्तबा सदर के इंतखाब के लिए वोट डाले जा रहे हैं। और आज शाम FIH हॉकी आलमी कप में भारतीय खवातीन टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में तमिलनाडु के कोवलम में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जौली तथा गायत्री गोपीचंद BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। भारत और जापान के रक्षा मंत्रियों की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइजुमे ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने, मेक इन इंडिया के तहत रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने और रणनीतिक विश्वास बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्री कोइजुमे और उनके प्रतिनिधिमंडल का भारत में स्वागत किया। उन्होंने जापान के कुमामोतो क्षेत्र में आए भीषण भूकंप के बाद भारत की ओर से संवेदना और एकजुटता व्यक्त की।
1: हम यह दोहराते हैं कि कठिन समय में भारत किसी भी जरूरी असिस्टेंस, रिलीफ और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है। हमारे दोनों देशों के संबंध साझे लोकतांत्रिक मूल्यों, परस्पर सम्मान और एक पुराने सिविलाइज्ड कनेक्ट पर आधारित हैं। अगले वर्ष हम अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस के 75 ईयर्स मनाएंगे और इन वर्षों के दौरान हमारी यह दोस्ती सिर्फ हमारे दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र में स्टेबिलिटी, रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड ऑर्डर का एक कॉर्नर स्टोन बन गई है।
0: श्री सिंह ने कहा कि एशिया के दो प्रमुख लोकतंत्र होने के नाते भारत और जापान पर शांति, स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने की बड़ी जिम्मेदारी है।
1: हमारी मैरीटाइम लाइफलाइंस बढ़ती हुई वल्नरेबिलिटीज का सामना कर रही हैं। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, ओवरफ्लाइट और अनहिंडर्ड लॉफुल कॉमर्स को सुनिश्चित करना सिर्फ इकोनॉमिक नेसेसिटी नहीं है बल्कि यह एक स्ट्रेटेजिक इम्परेटिव भी है। इंडियन ओशन और पब्लिक ओशन की सुरक्षा आपस में गहरे रूप से जुड़ी हुई है। इसलिए इंडिया के महासागर विजन यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन और जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक इनिशिएटिव के बीच क्लोज अलाइनमेंट आज पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी है।
0: श्री कोइजुमे ने कुमामोतो में भूकंप से प्रभावित लोगों के प्रति भारत की संवेदना पर आभार व्यक्त किया। उन्होंने जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के एक जहाज में चिकित्सा आपात स्थिति के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा दी गई सहायता की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है, जहां मुश्किल समय में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। दोनों नेताओं ने समुद्री संचार मार्गों की सुरक्षा के लिए दोनों देशों के बीच समन्वय मजबूत करने पर सहमति जताई। इससे पहले आज सुबह जापान के रक्षा मंत्री ने राष्ट्र समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक तमिलनाडु के कोवलम में शुरू हो गई है। बैठक में दक्षिणी राज्यों के नेता और वरिष्ठ अधिकारी अंतर्राज्यीय विवादों, सुरक्षा और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। बैठक में महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म के मामलों की जल्द जांच और सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक विशेष अदालतें बनाने तथा शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। इसके अलावा अंतर्राज्यीय सहयोग, आंतरिक सुरक्षा, आर्थिक विकास, औद्योगिक निवेश और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ब्रिक्स अध्यक्षता को जन केंद्रित बनाने और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री यादव ने एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित अपने लेख को सोशल मीडिया पोस्ट में साझा किया। उन्होंने कहा कि भारत मिशन लाइफ के सिद्धांतों पर आधारित सतत जीवन शैली को बढ़ावा देने के साथ साथ वनीकरण, जंगलों में आग की रोकथाम, आपदा से निपटने की क्षमता और पारंपरिक ज्ञान पर आधारित जन केंद्रित जलवायु अनुकूलन पर बल दे रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने ब्रिक्स

0: शिखर सम्मेलन 2026 की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। सम्मेलन का आयोजन 12 और 13 सितंबर को दिल्ली में होगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधू ने कहा कि भारत की अतिथि देवो भव की परंपरा के अनुरूप दिल्ली सभी विदेशी प्रतिनिधियों के सुव्यवस्थित, सुरक्षित और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन EIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। चौथे भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक आज सिंगापुर में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य, उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने बैठक में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट।
1: बैठक में डिजिटल तकनीक, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संचालन और साइबर सुरक्षा जैसे रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में उन्नत विनिर्माण, फिनटेक, डिजिटलीकरण, स्वास्थ्य और सतत विकास के क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर बल दिया गया। डिजिटल कौशल विकास में सहयोग को नई गति देने पर भी चर्चा हुई। भारत सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज बैठक दोनों देशों के बीच नए और उभरते क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण मंच है। इसकी पहली बैठक सितंबर 2022 में नई दिल्ली में हुई थी, दूसरी बैठक अगस्त 2024 में सिंगापुर में और तीसरी बैठक अगस्त 2025 में नई दिल्ली में हुई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: भारत ने काबुल के एक सरकारी अस्पताल को दवाइयां और चिकित्सा सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह सहायता अफगानिस्तान के लोगों की स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इसका उद्देश्य अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा प्रबंधन पर चौथी संयुक्त कार्य समूह की बैठक आज उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुई। दो दिन की इस उच्च स्तरीय बैठक में सीमा सुरक्षा और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने तथा आपसी हित के अन्य मुद्दों पर ध्यान दिया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस कार्य समिति के पूरा वंदे मातरम गाने के बजाय इसके केवल दो छंद गाने के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि यह संसद से पारित कानून का खुला उल्लंघन है और राष्ट्र विरोधी है। संवाददाताओं से बातचीत में श्री शाह ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टिकरण का रास्ता अपना रही है।
2: मैं देश की जनता को अपील करना चाहता हूं कि एक बार इस देश ने गलती करी थी वंदे मातरम के दो टुकड़े होने देने की, और एक गलती के गंभीर परिणाम हमने भुगते हैं। अब देश की जनता एकजुट हो और कांग्रेस पार्टी के इस फैसले के खिलाफ आवाज बुलंद करे कि अब इस देश में तुष्टिकरण की राजनीति नहीं चलेगी। आजादी के 80 साल के बाद 1937 में जो फैसला कांग्रेस ने किया था, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने सुधारा है, उसके सामने का कोई विरोध इस देश की जनता नहीं सहन करेगी।
0: वंदे मातरम पर कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाए जाने के बाद कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वर्ष 1937 से वंदे मातरम का गायन करती आ रही है। नई दिल्ली में श्री वेणुगोपाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के लिए भावना का मामला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति का मुद्दा है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज पटना में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बने 2,35,000 घरों की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। उन्होंने नए लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। श्री चौहान आज पटना के बामेटी में आयोजित कृषि जन कल्याण संवाद में भी शामिल होंगे। वाणिज्य विभाग में अपर सचिव यशवीर सिंह ने कहा है कि भारत के निर्यात में प्रगति, मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी इस्तेमाल, विनिर्माण क्षेत्र में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं, आपूर्ति श्रृंखला को देश में ही विकसित करने और नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने बात भारतीय उद्योग विनिर्माण संघ के तीसरे सम्मेलन में कही। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने आज नई दिल्ली में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के साथ एक पेड़ माँ के नाम पहल के तहत पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री मल्होत्रा ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से पर्यावरण संरक्षण सहित सभी क्षेत्रों में विकास कार्य में निरंतर प्रगति हो रही है।
3: हमारे पर्यावरण मंत्री सिरसा जी ने और रेखा जी ने मिलके दिल्ली के अंदर 70 लाख पेड़ लगाने की मुहिम छेड़ी और बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है। पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करवा करके उसके बाद दिल्ली सरकार उनको अप्रोच करेगी, उनको पेड़ देगी या उनको ऐसे स्थान पर बुलाएगी जहां पर ग्रीन कवर बढ़ाने की बात है।
0: कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ माँ के नाम अभियान को दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान बताया।
4: एक पेड़ माँ के नाम 2.0 जो देश के प्रधानमंत्री जी ने सेकंड मुहिम शुरू की है, इसमें अब तक 50 लाख पेड़ और पौधे लग चुके हैं। ये दिल्ली का अब तक का सबसे बड़ा अभियान है। पोर्टल के माध्यम से रजिस्टर करके अब तक 3.5 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं, जिसमें लगभग 1,58,000 पब्लिक के लोगों ने आकर साथ दिया। ऐसे अनेकों हमारे मुहिम चल रही है, हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रचार प्रसार इस पर्यावरण को बचाने के लिए कर रहे हैं।
0: जम्मू जिले के खेरी गांव में जमीन धंसने से करीब 12 मकानों को नुकसान पहुंचा है। इनमें 2 मकानों को काफी नुकसान हुआ है। कृषि भूमि और 1 सड़क भी प्रभावित हुई है। राजस्व तथा पुलिस की टीमों ने मौके का जायजा लिया है और राहत और बचाव कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश में 35 साल के लंबे अंतराल के बाद राष्ट्रपति चुनाव के लिए जातीय संसद में मतदान हो रहा है। मतदान 5 बजे तक चलेगा। सत्ताधारी दल के सांसद बीएनपी के नेता मिर्जा फखरुल इस्लाम आलमगीर का मुकाबला 11 पार्टियों के विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार कर्नल ओली अहमद से होगा। रूस ने कल रात यूक्रेन की राजधानी कीव पर मिसाइलों से हमला किया। इसमें 6 लोग मारे गए और 33 घायल हुए। यह हमला ऐसे समय हुआ है जब रूस कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को तेज कर रहा है, जिससे यूक्रेन की सीमित हवाई रक्षा क्षमताओं पर और दबाव बढ़ रहा है। और अब खेल खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
5: नई दिल्ली में BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। भारतीय जोड़ी ने जापान की 7वीं वरीयता प्राप्त रिन इवानागा और की नाकानिशी को हराया। खेल के बाद मीडिया से बातचीत में गायत्री और त्रिशा ने कहा कि वे मैच के शुरुआती 2-3 अंकों में ही विपक्षी खिलाड़ियों की रणनीति समझ गई थी। उन्होंने बताया कि पहले गेम के दूसरे हिस्से में उन्होंने आक्रामक खेल अपनाया और यही रणनीति दूसरे गेम में भी जारी रखी, जिसका उन्हें फायदा मिला। सिंधु समेत भारत के कई प्रमुख खिलाड़ी आज अपने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेलेंगे। सिंधु का सामना चीन की वांग झी यी से होगा। युवा खिलाड़ी आयुष शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के अलवी फरहान से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना मलेशिया के जुनेदी आरिफ और रॉय किंग याप से होगा। वहीं मिक्स्ड डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी चीन के गुओ शिनवा और चेन फांग हुई से खेलेगी। और हॉकी में FIH विश्व कप के पूल डी के अपने अंतिम मैच में भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड के साथ मुकाबला खेलेगी। ये मैच अम्स्टलफेन के वैगनर स्टेडियम में भारतीय समय के अनुसार शाम 6:30 बजे से शुरू होगा।
0: घरेलू शेयर बाजार सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में तेजी बनी रही। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 668 अंक बढ़कर 77,577 जबकि निफ्टी 169 अंक की बढ़त के साथ 24,248 पर कारोबार कर रहा था। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन तक तेज वर्षा हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और जापान के बीच रक्षा साझेदारी को और मजबूत करने पर सहमति। समुद्री सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। तमिलनाडु के कोवलम में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में 31वीं दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अंतर्राज्यीय विवाद, सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर चर्चा। भारत सिंगापुर मंत्री स्तरीय गोलमेज बैठक में सेमीकंडक्टर और साइबर सुरक्षा सहित महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श। बांग्लादेश में 35 वर्ष के अंतराल के बाद पहली बार राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान जारी। और त्रिशा जॉली तथा गायत्री गोपीचंद BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप के महिला डबल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी हम आपके संग जुड़े हुए हैं।

श्रोताओ, जैसा कि आप जानते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा जो कि 3 जुलाई को शुरू हुई थी और अब अपने समापन की ओर बढ़ रही है, इस पवित्र यात्रा ने हजारों लाखों भक्तों को श्री अमरनाथ जी के दर्शन का सौभाग्य दिया। अब यात्रा के इन चरणों में जो है उत्तेजना का एक नया अध्याय जो है शुरू होने जा रहा है, यानी तीर्थ यात्रा का मुख्य चरण 22 अगस्त को महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में शुरू हो जाएगा। पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पहलगाम मार्ग से होते हुए 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अंतिम पूजा के लिए श्री अमरनाथ जी गुफा को पहुंचेगी। श्रोताओं, हम बता दें आपको कि शुद्ध शटिका यानी पवित्र छड़ी मुबारक जो कि यात्रा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक है, वो अपनी यात्रा पर तो निकल चुकी है, लेकिन हम ये कहेंगे कि इसकी अंतिम यात्रा जो है 22 अगस्त को निकलेगी और इस पवित्र छड़ी मुबारक को विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाएगा जहां इसके सम्मान में विशेष पूजा अर्चनाएं और भजन कीर्तन किए जाएंगे। और ये जो है ये अति प्रतीक हम ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन कालिक परंपरा है जो श्री अमरनाथ जी यात्रा के आध्यात्मिक महत्व को और भी बढ़ा देती है। इन पूजा अर्चनाओं के बाद छड़ी मुबारक को अंतिम लक्ष्य यानी अमरनाथ जी गुफा यानी पवित्र गुफा की ओर ले जाया जाएगा, जहां पर रीति रिवाज से इस यात्रा का ना सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से जो है अंत होगा, और हम ये कहेंगे कि धार्मिक दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण भी है, बल्कि कश्मीर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतिनिधित्व करती है। और हम इस यात्रा से जुड़े पूरे समूह से अनुरोध भी करते हैं कि वो इस पवित्र यात्रा के अंतिम चरणों में भी अपनी श्रद्धा और भक्ति बनाए रखें। साथ ही हम उनसे ये भी अनुरोध करते हैं कि वो स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते रहें, ताकि ये यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरह से जो है संपन्न हो सके। और हमारी यही कामना भी है, प्रार्थना भी है कि ये यात्रा जिस तरह से सुखद माहौल में सुखद तरीके से आरंभ हुई, उसी तरह से सुखद और सुरक्षित तरह से संपन्न अपने समापन को

श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा एक आस्था की यात्रा है। हिमालय की तीर्थ यात्राएं सबसे पुरानी व्यवस्थित यात्रा प्रणाली हैं, जिन्हें समय के साथ हिंदू ऋषियों ने विकसित किया और जो घूमने फिरने, रोमांच और आध्यात्मिकता की भावना को दर्शाती हैं। हिंदू धर्म की पवित्र त्रिमूर्ति में से एक शिवजी एक जीवित देवता है। भारत की सबसे प्राचीन और पवित्र पुस्तक ऋग्वेद अपने भजनों में उनकी उपस्थिति का वर्णन करती है। वैदिक कथाएं, रीति रिवाज और यहाँ तक कि खगोल विज्ञान भी समय की शुरुआत से ही उनके अस्तित्व की गवाही देते हैं। माना जाता है कि शिवजी ने हिमालय को अपना घर बनाया था। उन्होंने न तो अपने लिए और न ही अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए कोई घर या आश्रय बनाया। वे एक तपस्वी थे, फिर भी विवाहित थे। वे दोनों ही रूपों में रह सकते थे क्योंकि वे जंगल में क्रीड़ा करने वाले या बादलों पर आराम करने वाले देवता थे। कहा जाता है कि शिवजी ने अमरनाथ जी गुफा में माता पार्वती जी को सृष्टि का रहस्य बताया था। उन्होंने ये बताया जाता है कि उन्हें पता नहीं चला, लेकिन कबूतरों के एक जोड़े ने ये बातचीत सुन ली और रहस्य जानकर वे बार बार जन्म लेते रहे और उन्होंने गुफा को ही अपना स्थानीय, हम ये कह सकते हैं कि अपना स्थायी निवास बना लिया। कई तीर्थयात्री बर्फ के लिंग यानी शिवजी के प्रतीक के दर्शन के लिए इस कठिन रास्ते पर चलते हुए कबूतरों के उस जोड़े को देखने की बात बताते हैं। श्रावण यानी जुलाई और अगस्त के महीने में आरंभ ये अमरनाथ जी की यात्रा है। इस यात्रा के दौरान श्रद्धालु इस अद्भुत तीर्थ स्थल पर उमड़ पड़ते हैं, जहां लिंग के रूप में शिवजी की आकृति प्राकृतिक रूप से बर्फ के खंभे से बनती है और जो चंद्रमा के साथ घटती बढ़ती रहती है। और दिलचस्प बात यह है कि इसके बगल में बर्फ के दो और लिंग भी बन जाते हैं, जिन्हें माता पार्वती जी और उनके पुत्र श्री गणेश जी के ये बताया जाता है कि उनके प्राकृतिक रूप बन जाते हैं।

बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में। और अब हम बात करते हैं पवित्र गुफा की खोज के बारे में। श्रोताओं, एक पुरानी कहानी के अनुसार बुट्टा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे को एक साधु ने कोयले की एक बोरी दी थी। घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उस बोरी में असल में सोना था। बहुत खुश होकर बुट्टा मलिक उस साधु को ढूंढने और उनका शुक्रिया आभार अदा करने के लिए वापस गए।

0: सबके सहारे, दुख हो या सुख
1: हो। श्रोताओं, आपको बता दें कि पवित्र गुफा की खोज जो है एक पुरानी कहानी के अनुसार बुट्टा मलिक नाम के एक मुस्लिम चरवाहे को एक साधु ने कोयले की एक बोरी दी थी। घर पहुंचने पर उन्हें पता चला कि उस बोरी में असल में सोना था। बहुत खुश होकर बुट्टा मलिक उस साधु को ढूंढने और उनका शुक्रिया आभार अदा करने के लिए वापस गए, लेकिन जहां वे मिले थे वहां उन्हें एक गुफा मिली और आगे चलकर ये जगह सभी आस्था रखने वालों के लिए तीर्थ स्थल बन गई। आज भी तीर्थ यात्रियों द्वारा दिए गए दान का कुछ हिस्सा बुट्टा मलिक के वंशजों को दिया जाता है और बाकी हिस्सा उस ट्रस्ट को दिया जाता है जो इस पवित्र स्थल का प्रबंधन करते हैं। एक और कहानी के अनुसार जब कश्यप ऋषि ने कश्मीर घाटी से पानी निकाला, यानी कि माना जाता है कि ये कभी एक विशाल सी झील थी, तो हिमालय की यात्रा कर रहे भृगु ऋषि को वो गुफा और शिवलिंग मिला। जब लोगों को उस शिवलिंग के बारे में पता चला तो अमरनाथ जी उनके लिए शिव जी का निवास स्थान और तीर्थ स्थल बन गया। पंडित कल्हन ने राजतरंगिणी में इस पवित्र गुफा का उल्लेखन जो है किया है। उनके अनुसार राजा रामदेव ने, जो कि अयाश राजा, सुखदेव को कैद कर लिया था और अमरनाथ जी की पहाड़ियों के बीच लिदिर नदी में डुबोकर मार डाला था। साथ ही लगभग 1000 ईसा पूर्व राजा संधिमती ने पवित्र बर्फीले शिवलिंग के दर्शन किए थे। इससे पता चलता है कि अमरनाथ जी की पवित्र गुफा के बारे में लोगों को पुराने समय से ही जानकारी थी। पुराने ऐतिहासिक वृत्तांतों में अमरनाथ जी तीर्थ का उल्लेख अमरेश्वर के रूप में मिलता है और कहा जाता है कि कश्मीर के नेक शासक सुल्तान जैनुल आबदीन ने भी इस पवित्र गुफा के दर्शन किए थे। और साथ ही हम ये बताते हैं आपको, अमरनाथ जी की खोज से जुड़ी कहानियाँ और इतिहास, चाहे जो भी हो, आज ये तीर्थ यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र है। यहाँ का रास्ता जितना रोमांचक है उतना ही कठिन भी। फिर भी जी हाँ,

भी हर साल हजारों लाखों श्रद्धालु हिमालय में स्थित भगवान शिव जी के इस प्रसिद्ध धाम में उनके दर्शन और पूजा अर्चना के लिए आते हैं।

0: बाबा आपका चिंटू आ गया।
1: मैं तुझे अपने कंधों पे कैसे उठाऊं?

श्रोताओं, बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग। और आपको बता दें कि तीर्थ यात्रा का मुख्य चरण जो 22 अगस्त को जो है यह अध्याय शुरू हो रहा है, महंत दीपेंद्र गिरी जी के नेतृत्व में ये शुरू होगा और पवित्र छड़ी मुबारक पारंपरिक पहलगाम मार्ग से होते हुए 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर अंतिम पूजा के लिए श्री अमरनाथ जी गुफा पहुंचेगी, जहां पर इसकी पूजा अर्चना के बाद विसर्जन होगा और यूं ये यात्रा जो है अपने समापन को पहुंचेगी।

श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण में, और इस प्रसारण में हमने पवित्र गुफा की खोज के बारे में आपके साथ जो है जानकारी साझा की। अब बात करते हैं गुफा के विवरण के बारे में, यानी कि ये पवित्र गुफा काफ़ी बड़ी है। इसका प्रवेश द्वार क्षितिज रूप से लगभग 40 गज चौड़ा और ऊंचाई में लगभग 75 फीट है। ये पहाड़ के अंदर 80 फीट की गहराई तक ढलान वाली है। पवित्र गुफा के भीतर बर्फ का लगभग 5 फीट ऊंचा शिवलिंग है, जिसे शीर्ष पर शंकु यानी कि कोन जैसी आकृति बनी है। श्रोताओ आपको बता दें कि ये स्पष्ट रूप से भगवान शिव जी का प्रतीक है। शिवलिंग के बाईं ओर बर्फ का एक छोटा टुकड़ा है जो भगवान गणेश जी का प्रतिनिधित्व करता है, और उसके भी बाईं ओर बर्फ की एक और छोटी आकृति है जो देवी पार्वती का प्रतीक मानी जाती है। बर्फ की ये आकृतियाँ गर्मियों के दिनों में बनती हैं और चंद्रमा की कलाओं के साथ घटती बढ़ती रहती हैं। पूर्णिमा के दिन इनका आकार पूर्ण होता है, जबकि अमावस्या के दिनों में ये पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं।

श्रोताओं बने हुए हैं आप और श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग, और अब इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत के बारे में बात करते हैं। कश्मीर बहुत ही पुराने समय से ही देवी देवताओं का घर रहा है। इनमें सबसे पवित्र और मशहूर जगह है श्री अमरनाथ जी की गुफा, जहां अमर भगवान शिव जी का वास माना जाता है। ये गुफा समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये कश्मीर के मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पहलगाम से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। आपको बता दें कि इस तीर्थ यात्रा की शुरुआत के बारे में संस्कृत की किताब में बताया गया है कि इसमें लिखा गया है कि ऋषि ब्रिंगेश ने अपने शिष्यों को अमरनाथ जी गुफा का महत्व बताया और उन्हें पवित्र गुफा में जाकर बर्फ से बने पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने का निर्देश दिया। हालांकि तीर्थयात्रियों को राक्षसों ने परेशान किया, यानी कि राक्षसों से परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ा। तब ऋषि ब्रिंगेश ने भगवान शिवजी से प्रार्थना की, तो भगवान शिवजी ने ऋषि को की यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए एक छड़ी भेंट की। तब से ये तीर्थ यात्रा के जत्थे की सुरक्षा का प्रतीक रही है और अब इसे छड़ी मुबारक कहा जाता है। पारंपरिक यात्रा आमतौर पर हर साल रक्षाबंधन पूर्णिमा यानी अगस्त के आखिरी हफ्ते के आसपास पर गुफा तक पहुंचती है और छड़ी के साथ, यानी कि ये छड़ी मुबारक जो है, इसके साथ बड़ी संख्या में तीर्थयात्री साधु संत जो है मंत्रों का जाप करते हुए चलते हैं और इस छड़ी मुबारक की अंतिम पूजा दरियाए लेदर के किनारे होती है, जहां पर इसका विसर्जन होता है।

श्रोताओं, 2026 की अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई, जो कि 28 अगस्त 2026 तक चलेगी, यानी कि 57 दिनों तक चलेगी। पारंपरिक प्राचीन पहलगाम मार्ग और छोटे बालताल मार्ग से चलने वाली ये यात्रा अब अपने आखिरी चरणों में आ चुकी है, यानी जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा मंदिर में पवित्र दर्शन जो है किए हैं। और 28 अगस्त को जो है ये यात्रा अपने हम ये कहेंगे कि आखिर तक पहुँचेगी, यानी 28 अगस्त को जो है ये इस यात्रा का अंत होगा।

भगवान शिव जी ने देवी पार्वती को अमृता का रहस्य यानी कि अमर कथा सुनाई थी। आध्यात्मिक महत्व और दिव्य ज्ञान है इसमें और ये शिव जी की अमर शिक्षाओं का पवित्र स्थल भी है। और श्रोताओं आपको बता दें कि माना जाता है कि बर्फ़ के शिवलिंग के दर्शन से पाप धुल जाते हैं और आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाती है। और ये यात्रा हिंदुओं या के पवित्र महीने यानी कि श्रावण के दौरान आयोजित की जाती है और रक्षाबंधन के दिन इसका समापन होता है।

श्रोताओं, यात्रा के पहले दिन से ही दोनों मार्गों से तीर्थ यात्रा, और हम ये कहेंगे कि यात्रियों की संख्या जो है ने काफ़ी एक अच्छी खासी संख्या रही, जिन्होंने बाबा बर्फानी के नाम का सिमरन करते हुए, जाप करते हुए, नारे लगाते हुए यात्रा का आरंभ किया और शांतिपूर्ण तरह से, सुखद तरह से, कड़ी सुरक्षा के साथ ये यात्रा चलती रही। और फिर प्रसन्नता के साथ ये बाबा बर्फानी के दर्शन करके संतुष्टि के साथ अपने अपने क्षेत्रों, अपने अपने घरों की ओर रवाना भी हुए ये तीर्थयात्री, और घर वापसी का वातावरण भी बहुत ही प्रसन्नता से चलता रहा। और इस प्रकार से हजारों लाखों यात्रियों ने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। हाँ, मौसम अवश्य करवट बदलता रहा, लेकिन अच्छी व्यवस्थाओं के कारण यात्रा बिना किसी बाधा या आचरण के चलती रही। मौसम ऐसा भी रहा कि वर्षा काफ़ी हुई, और वर्षा के कारण मौसम और सुहाना भी होता गया, और सुहाने मौसम में पवित्र यात्रा का एक अनोखा अनुभव भी होता रहा। और अधिकतर बाबा भोले के भक्त जो हैं गर्म क्षेत्रों से आते हैं, और फिर यहाँ के सुहाने मौसम का और यहाँ के प्राकृतिक सुंदरता का आनंद भी लिया उन्होंने, और फिर दर्शन करके तृप्त होकर वापसी भी होती रही मधुर सी यादों के साथ, हम यही कहेंगे। और हम ये भी कहेंगे कि बाबा भोलेनाथ जी की ऐसी श्रद्धा रही कि कुछ तीर्थ यात्रा जो है पद यात्रा करके भी बाबा भोलेनाथ के द्वार पर दर्शन के लिए आए, और वहीं कुछ श्रद्धालु साइकिल पर सवार भी होकर आए और बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए। और यात्रियों, हम ये कहेंगे कि यात्रा जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ शुरू हुई, और यही उम्मीद हम करते हैं कि श्रद्धा भाव के साथ ही जो है ये यात्रा जो है समापन को भी पहुंच रही है, और बहुत ही अनोखे से अनुभव भी रहे। फिर यात्रा के अब इन अंतिम दिनों में यात्रा की संख्या कम होती गई, लेकिन जोश और उत्साह जो है बिल्कुल पहले दिन जैसा ही है। जहाँ पर घर लौटते हुए भी बाबा भोलेनाथ के द्वार पर फिर से आने की इच्छा जो है अभी श्रद्धालुओं के मन में बाकी है।

बताओ यहाँ पर ये भी कहना चाहेंगे कि बहुत ही भाग्यशाली हैं वो भक्त बाबा के श्रद्धालु जो बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद जो है उसके बाद वो हासिल करने के बाद पवित्रता हासिल करने में सक्षम रहे।

और हमारी प्रार्थनाएं मनोकामनाएं हर एक बाबा भोले के श्रद्धालु के लिए, हर भक्त के लिए कि आप सब इस पवित्र, आपने इस पवित्र गुफा में हाजिरी दी और आप इस पवित्र गुफा में हाजिरी देकर पवित्रता हासिल करने में जो है आप सभी सक्षम रहे।

0: श्रोताओं बने हुए हैं आप श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के विशेष प्रसारण के संग। ये प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालताल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, FM पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़, DTH की आराधना सर्विस, न्यूज़ ऑन AIR ऐप और प्रसार भारती के वेव्स OTT प्लेटफॉर्म द्वारा भी आप हमें सुन पा रहे हैं। और श्रोताओं अब आप और हम मिलजुल कर आनंद लेते हैं बालताल में रिकॉर्ड की गई आरती का।
1: ओ श्री अमरनाथाय नमः।
2: धर्म प्रेमी बंधुओं, बाबा के इस पवित्र धाम में, पवित्र गुफा में आप सभी शिव भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। MH1 चैनल के माध्यम से देश एवं विदेश में जो भी भक्तजन बाबा के इस दिव्य गुफा का दर्शन कर रहे हैं, पवित्र आरती का दर्शन कर रहे हैं, उन सभी भक्तजनों का भी हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप सभी भक्तजनों के ऊपर भोले बाबा की विशेष कृपा है कि जो भोले बाबा के दिव्य दान से प्रातःकाल एवं सायंकाल की आरती का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है।

देवादिदेव महादेव संपूर्ण जगत के कण कण में विद्यमान है। कर्पूर गौरम, भगवान देवादिदेव कर्पूर के समान जिनका गौर वर्ण है। करुणावतारम, जो करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, जो समस्त संसार के सारभूत हैं। भुजगेंद्र हारम, जिन्होंने अपने कंठ में अपने गले में सर्पों की माला धारण किए हुए हैं, जिन्होंने अपने गले में मुंड मालाएं धारण किए हुए हैं, ऐसे देवादिदेव भोले बाबा अमरनाथ स्वामी हम सब शिव भक्तों के ऊपर, हम सब भक्तजनों के ऊपर निरंतर माँ घोरा के साथ निरंतर हमारे हृदय में बात करें। तो इसी के साथ सभी भक्तजन आरती का आनंद लेंगे और विद्वान जनों के द्वारा आरती श्रवण करेंगे। बोलिए शांत।

0: जाए।
1: सभी भक्तजन भोले बाबा के चरणों में बैठकर भोले बाबा की दिव्य आरती श्रवण कर रहे हैं। आप सभी भक्तजन बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ दोनों हाथों से ताली का वादन करते हुए भोले बाबा के सुंदर भजन का ध्यान करेंगे। बोलिए।

मेरा शंकर नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा शंकर।

0: सरपा बिराजे भोले के गले में सरपा बिराजे भोले के गले में सरपा बिराजे सरपा बिराजे जी सरपा बिराजे
1: सरपा बिराजे जी सरपा बिराजे

0: शंकर भगवान की
1: जय।
0: धर्म के
1: जय हो।
0: धर्म का
1: विनाश
0: ज्ञान दे मैं परमान सुखारो बंदे जयम
1: दे दिशो यही।
0: बोले बाबा आप सभी शिव भक्तों का

0: शंकर भगवान की जय। धर्म की
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: विनाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भाव न हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: मात पिता की
1: जय हो,
0: गुरु जनों की
1: जय हो,
0: सभी संतों की
1: जय हो,
0: सभी भक्तों की
1: जय हो,
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: भारत माता की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के घनों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय हो,
0: नमः पार्वती पते हर हर हर महादेव। शिव शंभो निरावलम ममावलम विपतिताशेषम मदेय पापाचल पाद शंभ प्रवर्तताम भाज्य सदैव बम बम।

0: आविर्भवतु।
1: सभी भक्तजन आरती आपको गेट के बाहर मिलेगी।
2: श्रोताओ, आप आनंद ले रहे थे बालताल में रिकॉर्ड की गई आरती का। इसी के साथ ही हमारी आज की ये सभा समाप्त होती है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे साथी इंजीनियर्स नसीर अहमद, एजाज अहमद और सहायक शौकत अहमद, और मैं आपकी साथी उद्घोषक सायका सलीम, और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री गुलाम रसूल आखून और श्री वसीम फारूक वानी। प्रातः 6:53 पर श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण लिए आपकी सेवा में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

0: और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

अब प्रसंग कुछ इस प्रकार से है। उधर अयोध्या से बारात प्रस्थान के पश्चात महिलाएं स्वांग रचाकर विभिन्न भेष धारण कर नक्टा प्रस्तुत करती हैं।

जनकपुर से चारों बेटे बहुओं की बारात लौटने के पश्चात परिछन करने के लिए तीनों रानियां पारंपरिक रीति से गीत गाकर हंसी खुशी परिछन करती हैं।

इधर मंथरा को खुशी रास न आई और कैकेयी के कान में फुसफुसाकर भवन में षड्यंत्र रचती हैं और कैकेयी राजा दशरथ जी से लिए हुए तीन वचन

उधर प्रजा में भयंकर प्रतिक्रिया होती है। लोग आपस में कानाफूसी करने लगते हैं। कुछ स्त्रियां अपनी बात साधारण जन के बीच रखती हैं।

प्रभु राम, सीता, लक्ष्मण गंगा पार केवट को उतराई देना चाहते हैं, परंतु केवट अपने प्रभु से सहज भाव से उतराई न लेने की भावना प्रकट करते हैं।

यशस्विनी। सिंहना ऊपर विराजेला जमना बे हाथे कमल धारण करे आशे अने कमल थी अलंकृत यशस्विनी। कार्तिके स्कंद, स्कंद नो अर्थ छे कार्तिके, हा पार्वतीजीना सुपुत्र गणेश अने कार्तिके, ने कार्तिके नु नाम स्कंद पण छे। ए स्कंद कार्तिकेयना माता पार्वती अमारु मंगल करो, शुभ पदार्थ आपो, शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। भगवती पार्वती नु एक नाम स्कंद माता छे। पार्वती ना बे पुत्रो स्कंद अने गणेश। तारकासुर नामना दैत्यनो वध करनार कुमार कार्तिकेयनी उत्पत्ति संभव। एक कथानक वालू एक दिव्य भव्य कुमार संभव महाकाव्य बहु जाणीतु छे महाकवि कालिदासनु। तो छांदोग्य श्रुति अनुसार भगवती शक्ति थी उत्पन्न थयेल सनत कुमार नु नाम पण स्कंद छे। संस्कृत साहित्य में एक विनोदजनक सुभाषित स्कंद ना कार्तिकेय ना संदर्भ में मळी आवे छे। श्लोक सांभळीए।

नमस्ते जगत तारिणी त्राही दुर्गे। हे शरण आपवामां कुशल कल्याणमयी दयामयी जगद्व्यापिके विश्वयमनु स्वरूप छे एवा जगदवंद्य चरणारविंदथी सुशोभित हे माँ दुर्गा अमारू आपत्तियोमांथी रक्षण करो, रक्षण करो।

सिंहों ऊपर विराजिला, मस्तकों पर चंद्र धारण करनार, लीलम मरकट, लीलम मणि जेवा शोभता, शंख चक्र धनुष्य अने बाणने पोतानी चार भुजाओं थी धारण करता, त्रण नेत्रों थी सुशोभ

वित मधुर शब्द करती घुघरियो वाला कंदोरा थी अने रणकार करता झांझर थी शोभता रत्न थी उज्ज्वल कुंडल वाला श्री दुर्गा माता अमारा दारिद्र्य अने दुःखनो नाश करो।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज़ ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।